0: soy Natalia y seré tu mejor voz para vender.
1: Stop scrolling for one second. This is the
2: part. आप मुझे शायद पहचाने नहीं, पर मेरी आवाज जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए। अब उसी आवाज से अपना नेक्स्ट
3: Transmite Radio Benja Online desde Huerta Grande, Valle de Punilla, Córdoba. Transmite Radio Benja Online desde Huerta Grande, Valle de Punilla, Córdoba.